0: फायर फाइटर्स ने शोलों को बुझाया जबकि एक निजी घर जुजवी तौर पर तबाह हो गया और कई इमारतें नुकसान का शिकार हुईं। हुकाम ने कहा कि इजाफी नुकसान का तखमीना जारी है। दूसरी जानब जनूबी रूसी शहर रोस्तोव ऑन दोन पर एक फिजाई हमले में दो अफराद हलाक हो गए हैं।
1: हुकाम ने बताया पीर की अलसुब फिलपाइन के महकमा इंसाफ के दाखिली दरवाजे के करीब एक खुद साख्ता बम फटा। ये वाक़ चंद घंटे पहले पेश आया जब मुल्क के सेनेट के करीब एक मुशतबे नकारा आले का तयन हुआ। इस धमाके में कोई जान नुकसान नहीं हुआ। दूसरे मुशतबे बम का तयन उसी दिन सदर फ्रेंडेंट मार्कोस जुंज की सालाना स्टेट ऑफ द नेशन तकरीर से चंद घंटे पेशतर हुआ। कौमी पुलिस के सरबरान ने पीर को सहाफियों से कहा इस बात का बड़ा इम्कान इहतमाल है दोनों वाकयात मरबूत थे। उन्होंने कहा अगरचे पुलिस के पास बम धमकियों हकीकी बम धमाकों दीगर के खिलाफ हंगामी मनसूबे मौजूद थे तहम कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो गई। सुबह सवेरे होने वाले धमाके की तफसीलात सामने नहीं आई। मनीला पुलिस के तर्जमान फिलिप अनिस ने कहा कि हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि धमाका वसी पैमाने का या महदूद सतह का था।
0: अमेरिका में फूड फेस्टिवल के दौरान मुसल्ला हमले में दो अफराद हलाक और पांच जख्मी हो गए। वाशिंगटन रियासत के शहर सियाटल में मुनक्किदा रिवायती बाइट ऑफ सियाटल फूड फेस्टिवल में फायरिंग का ये वाकया पेश आया। स्पेस नीडल के करीब वाकई इवेंट एरिया में मकामी वक्त के मुताबिक शाम तकरीबन 6 बजे होने वाले इस हमले में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दो अफराद हलाक हुए जबकि एक की हालत नाजुक है और मजमू तौर पर पाँच अफराद जख्मी भी हुए हैं। वाकई के फौरन बाद बड़ी तादाद में पुलिस और इमदादी टीमों को इलाके में रवाना कर दिया गया और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस फेस्टिवल ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है जहां लाखों लोग मौजूद थे। रियासती गवर्नर बॉब फर्गुसन ने ऐलान किया है कि मकामी पुलिस की मदद के लिए खसूसी ऑपरेशन टीमों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है।
1: तेल की मंडी में शदीद गिरावट देखी जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते मशरिक वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी आपने और मस में तरसील के खदशात के बिना पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 की सतह के करीब पहुंच गई थी। तमाम हफ्ते के पहले कारोबारी रोज इसमें तेज से कमी का मुशाहदा हुआ है। जुमे के दिन 91.68 डॉलर पर बंद होने वाला ब्रेंट ऑयल आज 5.5% की बड़ी गिरावट के साथ $86.61 पर फरोख्त हो रहा है। कीमतों में इस मंदी की अहम वजह अमरीका का वो ऐलान है जिसमें उसने सफारती कोशिशों को मौका देने के लिए ईरान के खिलाफ फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का कहा है जबकि इस मामले में चीन का फाल किरदार भी असरअंदाज हुआ है।
0: और तुर्की की खवातीन की कौमी वॉलीबॉल टीम ने चीन के खसूसी इंतजामी इलाके मकाओ में ब्राज़ील को 1-3 से शिकस्त देकर अपना दूसरा FIVB वॉलीबॉल नेशनल्स लीग का टाइटल जीत लिया है। 2023 से अब तक हेड कोच दानियेली सांतरेली का यह तीसरा गोल्ड मेडल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टीम को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और उनकी इस तारीखी कामयाबी और तुर्की का सर फख्र से बुलंद करने पर उनकी तारीफ की। इस फतह ने बैनुल अक्वामी वॉलीबॉल के स्टेज पर तुर्की के सुनहरी दौर को मज़ीद मजबूत कर दिया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।
1: सामने हम सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से मुखातिब हैं। लीजिए अब गुलकारा गुलशन के आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं। गाने के बोल हैं व्यूक हथरनवार।